सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुना।

हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे भरम चुकाया, जिन कै मन वस्या सच सोई। तिन की संगत गुरमुख होई।

जन पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जिया मह एको रवै।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द न

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ मन मुख सूतक कबह न जाए जिचर शब्द ना पीजै हर कह नाए रहाओ सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जम्मै वारो वार सूत

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझ हो सोई।

रहे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोह नत बाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते पेख करे पेख तारी।

पाए जम डंड सह है सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई होमे मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई।

गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सतसंगत सतगुर पाल सतसंगत लग हर त्याईए हर हर चले तेरे नाल मन करहला बड़ भागिया हर

छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन कर हला बट भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता, तब इसनो नाही किछ ताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने भेदा, तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एकी बूझया, तब ते इसनो सब किश सूझया, जब एहो तावे माया अर्थी, न तृप्तावे न तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर मह दीपक जलियो, जीत हा

गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तहरै।

सारा दिन सबेताला गिर तार धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत दिन

आराम सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपहो नगर तहां सद वसै।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

नाम समाहे। जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजहै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता।

ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृद्ध संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो।

आप रहया, आप सब कल धारिया। बिनवंत नानक पैज राखो, सब सेवक शरण तुम्हारिया। मोहन तुद

सागर निमख सिमरत साधिए कल मलह दहता शुद्ध करता दिन सुरैन अराधो बिनवंत नान।

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको रव।

जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

पौड़ी। एक है आप करावन हारा, आप है पाप पुन विस्थारा। या जुग जित जित आप है लायो, सो पायो जो आप दिवायो।

जम मरै गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहै हो आवे जाए तहत तहत अब टह परे।

ओ गोविंद भजहो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यों या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक कै हाथ जित जित लाभ हो।

पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ दे कल जुग मह पाया फिर या अवसर चरै ना हाथा नाम जपहो।

साध संग पतियाना दुख सुख वाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निर्लेपा पूर्ण घट घट।

अखर महंत्र पवन प्रवत हरे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा।

दर्शन दर्शना प्रभ कौ सिमरह से धनवंते प्रभ कौ सिमरह से पतवंते प्रभ कौ सिमरह से जन परवान प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरह से बे मोहताजे प्रभ कौ सिमरह से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी प्रभ कौ सिमरह सदा अविना

साध संग दुर्मत मल हिरया सगल उदम महे उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी महे अमृत बानी हर को जस सुन।

दयाल। करतूत पशु की मांस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्स नाहे कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान

बसहि सुख मंदर तिसहि त्याए सदा मन अंदर। जिहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना। जिहे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जिहे प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहि।

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रवता कै। जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास।

सो पंडित जो मन प्रबोधय राम नाम आत्म महसोदय राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश।

अष्टपदे मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एकै भगवान जिसका दिया रह अघाय बहरना तृष्णा लाग आए मारे राखे को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म।

कारी कहरी सब सृष्टि आपे आप सकल महे आप अनेक जुगत रथ थाप ओथाप अविनाशी नाही किश खंड धारम धार रहो ब्रह्मांड।

काहू बोल ना पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किनै ना पाई, अनेक भगत बंदन नित कर है।

आप अष्टपदी जब अकार एहु काश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक है हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत।

जह निर्मल पुरुख पुरुख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसह भूख।

श्रेष्ठम चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान।

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी, जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े, जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े।

करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे

प्रभ बेअंत किश अंत नाहे सब तिसै करणा अगम अगोचर साहेब जिया का परणा हस्त दे प्रतपालदा परण पोखण करणा।

कहै बड़ हम ही जिसह बुझाए सोई बूझै बिन बूझे क्यों रहिए सतगुर मिले अंधेरा चूकै इन विद्मान कलहिए।

जह अबोल तह मन न रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लख न कोई, अलह लहो तो क्या कहो, कहो ताको उपकार, बटक बीज महराव रहे हो।

केते थिरत खबत अज हूं नह चेते आब जग जान जौ मना रह जह का बिशरा तह थिर लह।

पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाहा किश लेवहो, जो उपजाय सो अलाख अपेवहो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

कण शोभा कंठ फूल प्रत्यखी दृष्ट पाए सगल निधान दुष्ट दूत की चूकी कान साध खुशियां।

सब जी सम्हारे एको एक आप एक एक है सगला पासारे जब जब होए सगल साध जन एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

चलै अभिमहनी काहे एक बिना चित लाइय उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर त्याय रहाओ।

सच अमली आसा महला पंजवा उद्यम किया कराया आरंभ रचाया नाम जपे जप जीवना गुर मंत्र दृढ़ाया पाए पर हैं सतगुरु कै जिन परम बिदारिया कर कृपा प्रभ अपनी सच साज सवारिया रहा कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई।

शगुन अपशगुन तिस को लग है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ पावे पुन दान जब तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना।

सारा, अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए ना फेरा, पारखियां वथ संभाल लई।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिय प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत दुख भी

अर्थ ले हो। भगत करो तुम शह केरी जो शह प्यारे पावे, अपना भाणा तुम करो ता फिर शह खुशी ना आवे। भगत पावे हो मार्ग बिखड़ा।

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध

जम द्वार जब पूछ सबरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गसाई जन्म जन्म रखवारे, कबहू न पार उतार चिराए हो कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं कांशीक दुल्हा बुझ हो।

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग

ब्रह्मत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच बेख काम लुभ दराता मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ।

योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा सतर दहन हर नाम कहन अवर कश ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ गुजरी महला पंजवा तू समरा

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत् ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं

मन मनम सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर।

कब हू मैल भरे अभिमानी, कब साधु संग धोइए, कोय न मेटै प्रभ का किया, दूसर नाही अलोइए। कहो नानक।

ऐसा तज रहे गुरमुख भिखिया नाउ तिसके चरण पखाली है नानक हों बलिहार जाऊं महला तीजा।

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल। इत मद पीता नानका बहुते खटिय है बेकार।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवे सोए, गुरमुख शब्द सच करणी सार, गुरमुख नानक परवारे साधार, वडहंस महला तीजा। रसना

चलिए जो हर प्रभु का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा

सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गाव है जो तेरा मन भाव है माया मोहे चेत है नाही अहला जन्म गवावे एक

सदा सुख बसहि, सदा सच रत्ता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजै पाए परम विभूति।

सुख होई गुरजेवड गुरजेवड दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा।

वढ़हंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रथ जगत सगल देहथा राम समरथ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हों कुर्बानी दास तेरे जिन्नी एक पछाता।

मिलहै जे सतगुर लागह साचे पाए। सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए। अवगुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सचराती सच्चा शब्द सदा सुख पाए।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

पौड़ी। सो सतगुर सेव हो साध जन, जिन हर हर नाम दृढ़ाया। सो सतगुर पूजहो दिन सरात, जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुर देखो एक निमख निमख,

पदे अपना कर मूस्त राख न सा कहे की पर कर जोहन लागा कर दर राख है जे रस चाख है जो

जो अंतर सो बाहर देखो अवरना दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलताओ ठाक रखो कर अपने।

सतगुर सेवे तां सहज तुन उपजै, गत मत तद ही पाए, हर का नाम सच्चा मन वसिया, नामे नाम समाए, बिन सतगुर

चात्रक जल, जो चात्रक जल बिन बिल लावे, बिन जल प्यास न जाई, गुरमुख जल पावे सुख सहजे, हरिया पाए सुपहाई।